0: एहारा निहार, एहारा मिहार।
1: नोदी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम अब दुस एम मेगाहर्ट्स
2: राज्य हिंदना

0: ना कोबा की ही ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल हालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में के दक काफ़ूं अता
2: मुन्ना थी है बुरा को वैंडा हिंका में ने अफन थी कंग कोलन ना
1: थी को तुम हाउ दा ही रंगल लाए थी हैं मुन्ना ऐ कही आह हाल बला फे मुन्ना रकां कंग को दिन ना है थी मुन्ना वरा उपावे
3: अब दफ़े ही लावत आए को माज़ी की तिरिया
4: हित तकुन जागहो दी एम्मे गाया वा फन्नानुंगे हांदान तक आए को
3: हांदान तो गे तिरिया दातुर कोल्लमा

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवे ही एफएम दिवे ही नाइक दिवे ही नाइक
1: टी टाइम रिक्वेस्ट टी टाइम रिक्वेस्ट
2: असलाम वालेकुम नोदी के मैं घर ती भे फिर मम्मी गड़ी गठी उनको लें ती भे मैं हूँ तेरे नवारा हूँ फावर वगुत को लगेंगे तो मुँह टी टाइम रिक्वेस्ट के मैं तुके शो आए की कबाद दो कोल दियार गुनशा होता महमूद टी टाइम रिक्वेस्ट मैं तुके मी शो सर में कुरिया गेंदा ने फर्स्ट करी तेरी सिंह माह में हूँ तेरी के रिक्वेस्ट तक आए की का कुरिया गेंदा मी शो का देखो तक रिक्वेस्ट कोलम के फुर्सत ली भी ना लावे कंगे दो माँ मैसेज अकूम बस मैं कोड़ा मी रिक्वेस्ट है फोन वाले वैन पी एस एम ऐप में देखो डी एफ एम 91 मी पेज मैसेज करो मुंदाणी मैसेज आए को लावे आगे नान लीला फोन वाले ने मेरे मिकोन शो में लवे जहाल देना मैसेज किया दे फिर दिन नूनिया गुड़ा लैंग वाह कदक का लाफ सीधा हम शाह मेना मी फोन वाले देम भी वाह कदक का बनी सीधा हम बुणल दे भी फराते अड़ूंग बुणल देवी का हाँ सको देवे सीधा अड़ूंग अड़ा अड़ूंग कम्फता ಕೆಂಗುಸ್ತೇನಾ ಏ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾ ಐಕೀಗ ಜಹಾಲಂ ಬೇಣು ವಾಲವ ಮಿಕೊಳಂಗ ಇವ್ವಾಲ್ದೇನ ಶೋಕ ಬ್ಯಾವೇರಿ ವಾಮ್ ಬೇಣುವ ಫರಾತಕ ಫಹೆಚ್ಚ ಹಂದೆ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬಿಗೆಂದಾಣಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರು ಮುಂದಾಣಿ ಹಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎ ಆಯ್ಪ್ ಮೇ ದೊರಕು ಡಿ ಎಫ್ ಎಮ್ 91 ಮೀ ಪೇಜಂಗೆ ರು ಮಿಕೊಳಂ ಶೋ ಹುಮೆ ಗುಳಾಲ್ದೇನ ಲವಾಗ ನಾನು ಲೀಲಾ ಫೋನ್ ವಾಲ್ದೀಫಿ ಅವರ ಫಸೇವಾಣಿ ಮಿಕೊಳಂ ಶೋ ಹುಮೆ ನ ಗುಳಾಲಂ ಹೆಮ್ಮ ಅವ ಹಮ್ಮ ಮಿಗಡಿ ದೆನ್ ಜಹಾಲ್ದೆ ಮಿಯೋಳ ಎಲ್ಲವ ಎವಗುತ್ ಕೊಳುಗ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರು ಮುಂದಾಮಿ ಏರು ಶೋ ಹುಮಿಕೊಳಂ ಗುಳಾಲಾಣ

0: बोला गया सीता बोला गया सी आम दुला हमें उस गिने वेनेंगे मुड़ेन
1: केरेन किया
0: मेर अन्न राग आहे दिए असदो ए दानी
1: ने ये किया कैसे
0: खोल ना मैं मी वाल दिने है बजिया लाला के नाम बोलो
1: एक खुरी का लोबी है बुने सब मशन ओलो वाले नी नो है क्या
0: दिन राग होगा किया बा
1: राग हो किया करने
0: अरे आज दिल को ते के मिली मावी इंगा आडवा हालन दो कौन राग का किया लावे तो में
2: पूरी गालो बीवे बुने फा मशंगलु वाल नीनू है
0: दर्न लावे
1: या
0: मिहारे मिहारे इंगे ने रागु के किया लो
1: इंगे है ने कमने केरे ने किया
0: आ ती ती वी गोते की रागु के कियंग नुकेरी के ती नेगे कमंग ही दिया स्लो ती ही रे किहात दिरा एहम दे मिकोलन दे लावे जहां जे निंगे जाया या दिन फार को मसे के फुरियम विचियाम जाया बेनु वाला वे जहां लवे निंगे तें को मेक वार बड़े शुक्रिया आणि बायर वेले निंगे
1: या ओके
0: एम फार को बदल वाने कम उम्मीद करा निंगे अडो हचेंगे दिवे हिस्से
1: या
0: ओके

0: दिव्य हिंदायक।
1: नवदी एकम मेगाहर्ट्ज दिव्य एफएम दिव्य हिंगे मुनफुए फिलुआ दिनमगा अबदुस।

हुआ ना दीदार, जिन्हें भी उनका जहन में उनके सवाल होंगे, जिन्होंने वो बेहिजाब देखे नसीब उनके कमाल होंगे, झुकी नजर का सुरूर ऐसा किसी की सुध-बुध रही ना बाकी, मिलाते होंगे वो जिनसे नजरें, खुदाया उनके क्या